0: Anda berada di zon lagu-lagu Hindi dalam Hindi
1: Hit. बेबी छोटी,
2: मम्मी कुछ भी खाए पर होती नहीं है मोटी।